एक बड़ा बड़ा भरोसा है सानू प्राप्त हो जाए, केड़ा भरोसा? दुनिया ते हर बंदा ये समझदा है कि सारे सुख मेरी सियाणप विच ने, और जेड़ियां गुरमुख रूहां ने उन्हां नूं ये भरोसा मिल जांदा है कि सुख सियाणप विच नहीं, तेरी सारे सुख गुरु की नज़र विच ने। प्यार नाल आखो सतनाम। बाणी च लिखिया सह सियाणपां लख होए तां इक ना चले नाल। बाणी च लिखिया ना तू आवें बस बहुता दान दे, ना तू आवें बस किते सियाणपे। बाणी च लिखिया चतराई ना चतर भुज पाईए। बाणी च लिखिया है बहुत सियाणप जम का भाव व्यापे। इशारा समझियो, हर बंदा समझदा कि मेरी सियाणप विच सुख ने, पर सानू इस गल का भरोसा बज जावे तेरी सियाणप च सुख नहीं, गुरु की नज़र विच सुख ने। आओ नाल नाल पढ़िए सारे भाई।

आप जी साखी श्रवण कर रहे थे। एक दुनियावी बेनती की शामू सेठ ने धन गुरु अमरदास जी के चरणा मेरे बड़े चंगे कारोबार चलन ए मनशा लैके सेवा कर रहे हैं, ये गुरु नानक का कर है। सतगुरु ने अपने खजाने चो कुछ माया दिती, आखिया दिल्ली जाके व्यापार करो गुरु नानक बरकत पाएगा। एक गल याद रखना, जदो कारोबार करोगे एक खाता गुरु नानक का रखना। प्यार ना लाखो सतनाम। आ सारे झाती पायो, ये गुरु अमरदास जी के वचन ने। किसे नू कारोबार भी बख्शिश कर रहे ने ते नाल प्रेरणा दे रहे ने, एक खाता गुरु नानक दा रखना। अपने जीवन च गुण वेखियो, कोई तुहाडे चो बैंक च नौकरी करदा, कोई कारखाने च नौकरी करदा, किसे दी दुकान है, किसे दे वड़े वड़े कारोबार ने। छाती पाओ भाई, असी भी गुरु नानक का खाता रखे है कि नहीं। आख सतनाम है। बाकी सुन का लाभ तो ताई है ना जी। गुरु नानक का खाता रखना की है, कमाई का दसवां हिस्सा दसवंध कढ़ना। ओ दसवंध दे विच्चों भावें गुटके वंडो, माला वंडो, किसे विधवा बीबी के बच्चों किताबा कापियां लै दो, किसे नंगे का तन कज दो, ये सब गुरु नानक नूं पहुंचता है। छाती पायो, असी भी गुरु नानक का खाता रखिया कि नहीं। दास अमर सच रहिंदा है। ये तो सब तो छोटी गल है कि दसवंध कढ़ना सिख ने जरूरी, थले दी डिग्री। अमृतसर च रहिंदिआं दास नूं इहो जे गुरमुख प्यारिआं नाल भी मेल हुंदा है साध संगत जी, जिन्हां ने अपनी फर्म दे विच वहीआं च इक खाता पाया हुंदा है। उह की कि साढ़े कारोबार विच पंजी पैसे पत्ती गुरु रामदास जी। आख सतनाम। ये होर वड़ी गल, गुरु रामदास जी नू अपनी दुकान विच पंजी पैसे पत्ती गुरु रामदास जी तुहाडी। ये की है कि जे साल दे विच फर्म ने 5 लाख कमाया ते 1.25 लाख गुरु रामदास दे खाते विच, भावें गरीब नूं दिता जावे, गुरुद्वारे लई लाया जावे, भाव दसवंध कढ़न वालियां तों वी उत्ते उत्ते प्रेम वाले बैठे ने। मैनूं इक गल दस्सिओ सात संगत जी, जिन्हें अपनी फर्म विच दसो ये मन च धारिया होवे कि 25 पैसे पत्ती गुरु रामदास तेरी, ते जिस फर्म विच गुरु रामदास आप भाईवाल होण दसो, वह फर्म कभी डिगण देंगे, वह फर्म नूं कभी घाटा पैण देंगे। आख सतनाम। भाई अपना मन तोले, असी कित्थे खड़े हैं, सानू बाणी विच हुक्म है सात संगत जी, आओ पढ़िए की हुक्म है बाणी विच।

छोड़ कोई अवर न त्याऊ, जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारिय है, चुन चुन सतर हमारे मारिय है।

भाई मती दास आरे दिन चीर दिता गया, फिर हुक्म होया भाई दयाले नू लिया जावे, सामने खुंडा दी अग बाल दिते गए, उत्ते वड्डा सारा पानी दा देगा जेड़ा रख दिता गया, एदे थले अग बाली आ पानी उबाले खारे। भाई मती दास नू भाई दयाला जी नू लिया गया, ओनू कहन लगे भी छेती फैसला कर कार्य, कहन लगे तू भाई जालिया पानी में उबल उबाल के तेरी मौत है जेरे ओ हो जाने है, पानी में उबलना पौगा तेनू, ते जा कलमा पढ़ ला, एक टुक फैसला जेड़ा कर दे। ये कहन लग्या मैं गुरु दा प्यारा सेवक हां सिख हां, ते गुरु दे नाल आया ते शहीद होने वास्ते आया, ते मैं मैनू ये शहीदी तो कोई रोक नहीं सकदा, मैं कलमा नहीं पढ़ना, धर्म नहीं बदलना। ते इसने कहने नहीं तो फिर आऊंगा, पहला कदम पटेगा, दूसरा पटेगा, तीसरा कदम तो फिर देगे विच होगा तेरा। कहने भाई जाला जी ने अरदास कीते, क्या धन गुरु अर्जन साहब महाराज पातशाह तुहानू जालम जहांगीर बादशाह दे हुक्म दे नाल देगे विच उबाल दिता गया सी, ते ओ शक्ति आ जेड़ी मैनू बख्शो, मेरे विच कोई शक्ति नहीं, मैं पानी विच उबला उबाले खावा, मेरा मन किते डोल ना जांदा होवे, सच्चे पातशाह मेरे सिर ते मेहर भरिया हाथ रखो। अरदास करके भाई दयाला जी देग विच चौंकड़ी मार के बैठन लगे हन, तां उस समय दा इतिहास साडी जत्था ਇਉਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

चवर शतक तक इनके मालिक हाजरा हजूर जहर हजरा सर्व कला पर मालिक का नाम सर्व तक पाल गुप्ता गति विराजमान मेरे तान गुरुदेव के साथ

तुम वड अगम वड पुरखा जन नानक हर कृपा धारी पाखान डुपत हर राखा जय श्री महला चौथा हम बारिक कछु न जान है गत मेत तेरे मूर्ख मुग्ध एना हर कृपा धार दी जय मत उत्तम कर ली जय मुग्ध सियाना मेरा मन आलसिया उगलाना हर हर आन मलायो गुर साधु मिल साधु कपट खुलाना रहाऊ गुर खिन खिन प्रीत लगाव मेरा ही हरै मेरे प्रीतम नाम पराना बिन नावै मर जाइए मेरे ठाकुर ज्यो अमली अमल लुभाना जिन मन प्रीत लगी हर केरी तिन तुर भाग पुराना तिन हम चरण सरेव है खिन खिन जिन हर मीठ लगाना हर हर कृपा धारी मेरा ठाकुर जन बिछरिया चिरी मलाना तन तन सतगुर जिन नाम दिरडाया जन नानक तिस कुरबाना जय श्री महला चौथा सतगुर साजन पुरख वड पाया हर रसक रसक फल लाघबा माया पोयंग ग्रस्यो है प्राणी गुरबचनी बिसहर काढ़बा मेरा मन राम नाम रस लाघबा हर किए पत्र पवित्र मिल साध गुर हर नाम है हर रस चाखबा रहाओ धन तन बड़ भाग मिलो गुर साधु मिल साधु लिव उन्मन लाघबा तृष्णा अगन बुझी शांत पाई हर निर्मल निर्मल गुण गायबा तिनके भाग खीन तुर पाए जिन सतगुर दर्शना पाएबा ते दूजे पाए पवह गर्भ जोनी सब बिरथा जन्म तिन जाएबा हर देहो बिमल मत गुर साध पग सेव है हम हर मीठ लगाएबा जन नानक रेण साध पग मांगे हर हुए दयाल दुआएबा जय श्री महला चौथा जिन हर हृदय नाम ना बसेऊ जिन मात की जय हर बांझा जिन सुन्नी देहे फिरे बिन नावे वे खप खप मोए करांजा मेरे मन जप राम नाम हर माजा हर हर कृपाल कृपा प्रभ धारी गुर ज्ञान दियो मन समझा रहाऊ हर कीरत कल युग पादे उत्तम हर पाइय सतगुर महाजा हम बलिहारी सतगुर अपने जिन गुप्त नाम पर गाजा दर्शन साध मिलियो वड भागी सब किल विख गए गवाजा सतगुर साह पाया वड दाना हर किए बहु गुण सांझा जिनको कृपा करी जग जीवन हर उरतारियो मन महाजा धर्म राय दर कागद फारी जन नानक लेखा समझा जय श्री महला चौथा सतसंगत साध पाई वड भागी मन चल तो भयो अरूड़ा अनहत धुन वाजह नित वाजी हर अमृत धार रस।

जाऊं। ताकत बंद भए है माया, दिख संच है लाइज कीड़ा। हर कह अर्थ खर्च नह साक है, जमकाल सह सिर पीड़ा। जिन हर अर्थ शरीर लगाया, गुर साधु बहु श्रद्धा लाए मुख धूड़ा। हलत पलत हर शोभा पाव है, हर रंग लगा मन गूड़ा। हर हर मेल मेल जन साधु, हम साध जना का कीड़ा। जन नानक प्रीत लगी पग साध, गुर मिल साधु पाखान हरिओ मन मूड़ा। जैत श्री महला चौथा कर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हर हर सिमरोह अगम अपारा, जिस सिमरत दुख मिटै हमारा। हर हर सतगुर पुर

हर हर हर हर भगत दिरडावहु, हर हर नाम उमा हाराम, हर हर नाम दयाल त्याहा, हर कह रंग सदा गुण गाह, हर हर हर जस घूमर पावहु।

रस रस राम रसाल सलाहा, मन राम नाम पीना लैलाहा। खिन खिन भगत करह दिन राती, गुरमत भगत अमाहा राम। हर हर गुण गोविंद जपाहा, मन तन जीत शब्द लैलाहा। गुरमत पंच दूत वासे आवह, मन तन हर ओ माहा राम। नाम रतन हर नाम जप।

जप जगदीश जपो मन माहा, हर हर जगन्नाथ जगलाहा। तन तन वड्डे ठाकुर प्रभ मेरे, जप नानक भगत उमाह।

आपे सतगुर समुंद मथाहा, आपे मत मत तत कढ़ाई, जप नाम रतन ओ महाराम, सखी मिलो मिल गुण गावाहा, गुरमुख नाम जप हो हर लाहा, हर हर भगत दृढ़ी मन पहाई,

हर हर नाम न पूजह पूजा, हर हर अतुल तोल अत पहारी, गुरमत जप उमाहा राम, सब कर्म धर्म हर नाम जपाहा, किल विख मैल पाप तुआहा, दीन दयाल हो जन।

कोई जानै कवन इहां जग मीत, जिस होए कृपाल सोई बिद बूजै, ताकी निर्मल रीत रहाउ, मात पिता बनता सुत बंदप, इष्ट मीत अर पाई पूरब जन्म के।

0: तामह संतोख ना पाया।
1: हसत रथ अश्व पवन तेज
0: तनी भूमन चतुरांगा संग न चाल्यो इन मह कछुए ऊठ सदायो नांगा। हर के संत प्रिय प्रीतम प्रभ के ताके हर हर गाइए नानक इहां सुख आगे मुख उजल संग संतन कह पाइए। जय श्री महला पंजवां घर तीजा दुपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद देहो संदेशरो कहियो प्रिय कहियो विषम भई मैं बहु विद सुनते कहो सुहागन सहियो रहाओ। को कहतो सब बाहर बाहर को कहतो सब महियो वर्ण ना दिसै चिहन ना लखियै सुहागन सांत बजहियो। सर्ब निवासी घट घट वासी लेप नहीं अलपहियो नानक कहत सुनो रे लोगा संत रसन को बसहियो। जय श्री महला पंजवा तीरों सुन पीरों प्रभ को रहाओ। जी प्राण मन तन सब अर्पो नीरों पेख प्रभ को नीरो बेशुमार बेअंत बड़ दाता मने गिहीरों पेख प्रभ को जो चाहो सोई सोई पावो। आसा मनसा पूरों जप प्रभ को गुर प्रसाद नानक मन वस

जाओ देखो तो सगल मोहे मोहियो तो शरण परयो गुर भाग कर कृपा टहल हर लायो तो जम छोड़ी मोरी लाग तरयो सागर पावक को जो संत भेटे वड भाग जन नानक सर्व सुख पाई मोरो हर चरणी चित लाग जय श्री महला पंजवां मन मह सतगुर ध्यान धरा दृढ़ो ज्ञान मंत्र हर नामा प्रभ जियो मया करा रहाओ काल जाल अर महा जंजाला छुटके जमह डरा आयो दुख हरन शरण करुणा पत गहयो चरण आसरा नाव रूप भयो साध संग भवनिद पार परा अपयो पियो गत थियो परमा कहो नानक अजर जरा जय श्री महला पंजवां जा कहो भय गोविंद सहाई सूख सहज अन

रंग तत के बेते सतगुर ते बुद्ध पाई दया मया कृपा ठाकुर की ते ही संत सुपाई तिनकै संग नानक निस्तरियै दिन रस रस हर गुण गाई जय श्री महला पंजवा गोविंद जीवन प्राण धन रूप अज्ञान मोह मगन महाप्राणी अंधियारे मह दीप रहाओ सफल दर्शन तुमरा प्रभ प्रीतम चरण कमल अनूप अनक बार करो ते बंदन मनह चिराव हो धूप।

प्रश्न है मग्न होत कृपाती महाविख्याति तूर आयु शरण दीन दुख भंजन चितवो तुमरी ओर अपै पद दान सिमरन स्वामी को रब नानक बंधन छोर जय श्री महला पंजवां चात्रक चितवत बरसत में कृपा सिंध करुणा प्रभ धारु हर प्रेम भगत को नेह रहाओ अनक सुख चकवी नहीं चाहत आनंद पूर्ण पेख देह आन अपाव

आहे अनक जन्म भ्रम सरणी उधर दे अंधकूप ते लाभ हो अपनी चरणी रहाओ ज्ञान ध्यान किछ कर्म ना जाना नाहिन निर्मल करनी साध संगत कै अंचल लाभ हो दिखम नदी जाए तरनी सुख संपत माया रस मीठे ये नहीं मन मह तरनी हर दर्शन त्रिपत नानक दास पावत हर नाम रंग आभरनी जैत श्री महला पंजवा हर जन सिमरोह हृदय राम हर जन को अपदा निकट ना आवे पूर्ण दास के काम रहाओ कोट बिगन बिनस है हर सेवा निश्चल गोविंद धाम भगवंत भगत को पौ किस नाही आदर देवत जाम ताज गोपाल आन जो करनी सोई सोई बिन सत

भूलियो मन माया उरझायो, जो जो कर्म कियो लालच लग, तेह तेह आप बंधायो रहाओ। समझ ना परी बिखै रस रचियो, जस हर को बिसरायो। संग स्वामी सो जानियो नाहिन, बन खोजन को तायो। रतन राम घट ही के पीतर, ताको ज्ञान ना पायो। जन नानक भगवंत भजन बेन।

जमकू त्रास भयो उरे अंतर सरन गही कृपा निद तेरी रहाओ महापतत मुग्ध लोभी फुन करत पाप अबहारा

दह दिस को उठत आया घट ही भीतर बसै निरंजन ताको मर्म ना पाया नाहिन गुण नाहिन कश जप तप कौन कर्म अब कीजै नानक हार परियो सरनागत अपै दान प्रभ दीजै जैत श्री महला नौवा मन रे साचा गहो बिचारा राम नाम बिन मिथ्या मानू सगरो इहो संसारा रहाऊ जाको जोगी खोज तहारे पायो नाहे तेह पारा सो स्वामी तुम निकट पछानो रूप रेख ते न्यारा पावन नाम जगत में हर को कबहू नाहे संभारा नानक शरण परयो जग बंदन राखो हो बिरद तुहारा जैत्री महला पंजवां संत घर पहला

तिखाब जलतिया यार वे प्रिय हबे सखिया मुंह कही ना जेहिया यार वे हिक दू हिक चाड़े हौ किस चितेहिया हिक दू हिक चाड़े अनक पे।

फिर दयाल साधना वरंगिया वड भाग पाया गुर मिलाया साध कै सत संगिया आसा मनसा सगल पूरी प्रिय अंक अंक मलाई बिनवंत नानक सुख सखेंदी सा मैं गुर मिल पाई जय श्री महला।

आस पहर कर जोड़, सो प्रभ त्याई है, त्याए सो प्रभ सदा अपना, मन है चिंदिया पाई है, तज मान मोह विकार दूजा, एक स्यों लिवलाई है, अर्प मन तन प्रभु आगे, आप सगल मिटाई है, बिनवंत नानक धार कृपा, साच नाम समाई है, सलोक रे मन ता कौ त्याई है, सब बिद जा कै हाथ, राम नाम तन संची है, नानक निभ है साथ, संत साथी अड़ा प्रभ एक, दूसर नाही कोय, थान थरंतर आप, जल थल पूर सोए, जल थल महियल पूर रहया, सर्वदाता प्रभ धनी, गोपाल गोविंद अंत नाही, बेअंत गुणता के क्या गनी, पज सरन स्वामी सुखागामी, तिस बिना अन नाही कोए, बिनवंत नानक दया धार हो, तिस प्राप्त नाम होए, सलोक चित जे चित विया सो मैं पाया, नानक नाम त्याए सुख सबाया, संत अब मन छूट गया, साधु संग मिले, गुरमुख नाम लया, ज्योति ज्योत रले, हर नाम सिमरत मिटे किल बिख, बुझी तपत अघानिया।

लोभ मोहे अभिमान बूढ़े मरण चीत ना आवे पुत्र मित्र व्यवहार बनता एह करत बिहावे उज दिवस आए लिखे माए दुख धर्म दूत है दिठिया किरत कर्म ना मिटै नानक हर नाम धन नहीं खटिया उदम करह अनेक हर नाम ना गावही भरम है जोन असंख मर जन्म है आवही पशु पंखी फैल तरवर गणत कछु ना आवे बीज बोवस भोग भोग है किया अपना पावे रतन जन्म हर अंत जुए प्रभु आप ना पावही बिनवंत नानक भरम है परमाए खिन एक टिकन।

परम सत्कार जो गुरु रूप साध संगत सतगुरां दे बख्शे पर मौलिक समय में

श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी भट्टां उपदेश बख्शदे हुए होमे दे रोग तो मैं ते मेरी तो बचाउण वास्ते जो उपदेश करदे सन उन्हां दी पिछली तुकाई सी कि होमे दे रोग तो बचण वास्ते भाई गुरमुखो संगत विच आके सतसंगियां दे नाल बैठ के गुरमुख प्यारियां दी संगत विच आके महापुरशां दी संगत विच आके अकाल पुरख वाहिगुरू नूं याद करो। केड़े महापुरखां दी संगत विच आउणा है? जग जानत सुपना, जिहड़े संसार नूं सुपना मनदे ने, जिहड़े संसार नूं असत मनदे ने, उन्हां दी संगत विच आओ बैठो, वाहिगुरू नूं याद करो। ताई महाराज ने बचन कीता सती पैरी सत भला, पैर अठ हुंदे ने भाई, इत्थे सत लिखे ने महाराज ने। सती पैरी भाव अठा पैरां विचों सत पैर अपना काम कर, किरत कर महाराज कहिंदे। पर जिहड़ा अठवां पैर है ना, बहिए पढ़िया पास, उत्थे अठवां पैर कोलों लाउणा है जदों अर्थ करांगे, क्योंकि सत पैरां दी गल हो चुकी ना। इक जिहड़ा रहिंदा है उह अठवां बहिए पढ़िया पास, इक पैर महाराज कहिंदे पढ़िया होइआं दी संगत करो, जरूर जाओ उहनां दे कोल। पर हुण तुहानूं मुगावता लग जू के एमए पास को जाइए, एमबीबीएस को जाइए, एलएलबीए को जाइए, इंजीनियर को जाइए, इन्हां पढ़िया दी नहीं, किन्हां पढ़िया दी संगत करो जिथे सत असत विचारी। उन्हां पढ़िया दी संगत करनी है जिथे झूठ ते सच दी विचार हो, जिथे ए विचार होवे सच की है झूठ की है, वो किथे होवेगी? सतसंगियां विच जो सत नाल जुड़े हुए ने, जिन्हां नूं सत दा पता लग गया उही समझणगे झूठ की है। जिन्हां नूं सच दा ही पता नहीं कि झूठ दा पता किवें लगू, इहदी मिसाल इत्थों है। तुसीं आ पौंड पाई तां फिरदे हो सिक्का मोढ़े विच, ते जद तक पता ही नहीं लगेगा खोटा है, उन्ना चिर तां सामभ के ही रखोगे। इत्थे रखो सतना बटुए च पा के रखोगे कि डिग ना जावे, क्योंकि सच का पता नहीं लगे। पर जद पता लग गया कि खोटा है, फिर बोझे रोता की रखना है, कि नाली विच सिटोगे भगा के मारोगे। इसे तरह जब सच का पता लग जाए जीव न, झूठे असत संसार नूं फिर खोटे पैसे मांग भगा के मार दे। महाराज कहिंदे संगत किन्हां दी करो जिथे सत ते असत दी, झूठ ते सच दा निर्णा होवे उन्हां पढ़िया होयां दे कोल। कल इत्थे गुरु अर्जन देव महाराज जी ने विश्राम दिता सी सवैये दा कि भाई उन्हां दी संगत करो जो जग जानत सुपना, जिन्हां ने समझ लिया ये संसार झूठ है, ये सुपने दी न्याई है, एक पल है दूजे पल है नहीं। आओ जो गां साडे देह दा अभिमान कढ़न वास्ते सतारा भट्टां नूं महाराज

जेको मन जाने मन कोई मन सुतो गए मन बुद्ध मन सकल भवन की शुद्ध मन मोह चुटा न खाई मन जमक साथ न जाई ऐसा नाम निरंजन होई जेको मन जाने मन कोई मन मार्ग ठाक न पाई मन पत्थों प्रगट जाई मन मगर चले पंथ मन कर्म से किसन बंध ऐसा नाम निरंजन होई।

ना तीर्थ ऐसा नाम निरंजन होई देखो मन जाने मन कोई पंच प्रवान पंच प्रधान पंच पावन दुर्गमान पंच सुहेंदर राजान पंचांग गुरी ज्ञान जे को कहे करे विचार वर्ति का करण नाई कुमार तौल धर्म मै कपूत संतोषा प्रत्याजन सूत जे को बुझे हो वैसे ज्यार तबले ऊपर के

अमूल गुण मुल व्यापार अमूल व्यापारी अमूल भंडार अमूल आवे मुल लजारे अमूल भाई मुला समाए अमूल धर्म मुल दीवान अमूल तुल मुल प्रवान अमूल बखशीस मुल निशान अमूल कर्म मुल प्रमाण अमूलो मुलाखा न जाई आस आस रहे लिखलाई आखे वेद पाठ पुराण आखे पढ़े करे बत्याण आखे वरमे अखय अंध आखे गोपी चै गोविंद आखे ईश्वर आखे सिद्ध आखे जिथे जीते बुद्ध आखे दानव आखे देव आखे सुर नर मुन जन सेव गिते आखे अखण पाए।

ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड जिथे नाम मनोध कोड़े आनंद शर्मखंड की बाणी रूप जिथे काढ़ कड़ी है बहुत अलूप टांकिया गलां कठिया न जा रही जे को कह पिछा पछताए जिथे घड़ी है सुरत मात मात मन बुद्ध जिथे घड़ी है सुरस डांकी शुद्ध।

सपन कथ नहीं जाहि। नाहु मरहिं न ठग जाहि, जिनकर राम बस मन माहि, जिस भगत बसहिं कर लहु, करहिं आनन्द सच्चा मन सोहि। सच खंडो बस निरंकार, कर कर विखे नजर निहाल, जिथे खंडो मंडल वर पांडो, जिको कथय तंत न अंत। ज्ञान खंड में ज्ञान पर चांडो, जिथे नाल जुड़ो रुको डयानंद, शर्म खंड की बाणी रूप, जिथे काढ़ घड़ीए बहुत अनूप। ताकियां गल्लां कथियां न जाहि, जिको कहे पिछे पछताए, जिथे घड़ीए सुरत मत मन बुद्ध, जिथे घड़ीए सुरस डांकी सुध। कर्मखंड की बाणी जोर, जिथे उर न कोई होर, जिथे जोध महामल सूर, तिन में राम रहे।

भूत अंग अपंग पारगुण गण उधार मुनगण प्रणाम निरपैन काम आत दुख प्रचंड खंड अलिश्य कर्म अदृश्य कर्म सर्व प्रनाड्या आन जंड बाड्याई शाजरी छंद प्रसाद गोविंदे मकंदे गोविंदे मकंदे उधार।

हजारे गुंजत गूढ़ गजान के सुंदर हंसत है अजराज हजारे भूत भवेख भगवान के पुबत कौन करे नहीं जात बिचारी श्री पद श्री भगवान भजे बने अंत भगवंत के धाम सुधारी तीर्थ नहान उदय तमदान सुगंजम नियमन एक मसेकाय वेद पुराण देव पुराण जमीन जवान सुधार कपेकाय कौन आहार जति जतार सब सुब चार हजार के देखा है श्री भगवान भजे बना भूपत एक रति बने एक ना लेखा है शुद्ध बहादुर अंत सुशासन आदर जान दलेंगे बारी कमान भर मन मैं कर पर्वत पंखा लेना लेंगे।

बात की हो ध्यान से बैठ गए, ऐसे ही ऐसे से बैठ बतायो। साच कहूँ सुन ले हो सब, जिन प्रेम की हो चले प्रतायो। काहू ले पान पूरी करो सिर, काहू ले लिंग करे टकायो। काहू लख वर वाची दिशा में, काहू दिशा कोशी सुनवायो। को बदान को पूजता है पास, को मृतान को पूजन।

आनंद आनंद सब सुरत है, आनंद गुरु के जानिया जानिया आनंद सदा गुर ते, कृपा करे प्यारिया कर कृपा करे वे कटे, ज्ञान अंजन सारिया अंदरों जिनका मोह दिता, जिनका सब सच है सवा।

माया मोहनी जनी परम पलाया माया दमन जन की जन ठगौली पाईया कुर्बान कीता दिसे बैठो जन मोह मीठा लाया कहे नानक मन जांचो चतराही गिन न पाया हे मन प्यारिया तू सदा सच संभाले हे कुटुंब तू जे देखदा चलै नाही तेरा नाले साथ तेरा चलै नाही तिस नाल क्यों चित लाई है ऐसा कम मुले न कीचै जतंत पछोताई है सतगुरु का उपदेश सुन तू रह तेरा नाले कहे नानक मन प्यारे तू सदा सच संभाले।

जियो निर्मल भारत निर्मल भारत निर्मल जियो निर्मल सतगुरु ते करणी कमाणी कूड की सोए पहुंचे नाही मनसा सच समाणी जन्म रतंजनी खटे आपले से बनजारी कहे नानक जन मन निर्मल सदा रहे गुरु नाले जे को सिख गुरु सेती जन्म होवे होवे तो जन्म सिख कोई जियो।

सब तेरे बस तेरा हर भला तेरे पर आनंद बधाई तुझ धर मन हता तेजा पाया पुजर सर्व तरा

0: नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ अष्टपदी। पूरे गुर का सुन उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पेख सास सास सिमरो गोविंद मन अंतर की उतरे चिंद आस अनित त्यागो तरंग संत जना की तूर मन मंग आप छोड़ बेनती करो साध संग अगन सागर तरो हर तन के पर लिहो भंडार नानक गुर पूरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद साध संग भज परमानंद नरक निवार उदारो जियो गुण गोबिंद अमृत रस पियो चित चितवो नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल दामोदर दीन दयाल दुख भंजन पूर्ण कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का यह आधार उत्तम श्लोक साध के बचन अम्बलीक लाल ए रतन संत कमावत होत उधार आप तरह लोका निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जाके मान लागा हर रंग जय जय शब्द अनाहद वाजय सुन सुन आनंद करे प्रभु गाजय प्रगटे गोपाल महांत कै माथे नानक उदरे तिन कै साथे शरण जोग सुन शरणी आए कर कृपा प्रभ आप मिलाए मिट गए बैर भये सब रेन अमृत नाम साध संग लैन सो प्रसन्न भये गुरुदेव पूर्ण होई सेव की सेव आल जंजाल विकार दे रहते राम नाम सुन रसना कहते कर प्रसाद दया प्रवतारी नानक निभ ही खेप हमारी प्रभ की औसत करो संत मीत सावधान एकाग्र चीत सुखमनी सहज गोविंद गुणनाम जिस मन बसै सोहो तंदान सर्व इच्छा ता की पूर्ण होए प्रधान पुरख प्रगट सब लोए सब ते उज पाए अस्थान बहर न होवे आवन जान हर तन खाट चले जन सोए नानक जिसै प्राप्त होए खेम शांत रिद नव निद बुद्ध ज्ञान सर्व तै सिद्ध विद्या तप जोग प्रभ ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान चार पदार्थ कमल प्रगाश सब कै मद सगल ते उदास सुंदर चतुर तत् का बेता समदर्शी एक दृष्टेता ए फल तिस जन कै मुख भने गुरु नानक नाम बचन मन सुने ए निदान जपै मन कोय सब जुग मैं ता की गत होए गुण गोबिंद नाम धुन बाणी सिमरत शास्त्र वेद बखाणी सगल मतांत केवल हर नाम गोबिंद भगत कै मन विश्राम कोट अपराध साध संग मिटाए संत कृपा ते जम ते छुटाए जाके मस्तक कर्म प्रभ पाए साध शरण नानक ते आए जिस मन बसै सुनै लाए प्रीत किस जन आवै हर प्रभ चीत जन्म मरण ताका दुख निवारै दुलभ दे तत्काल उधारै निर्मल शुभा अमृत ता की बानी एक नाम मन माहे समानी दुख रोग बिनसे पै परम साध नाम निर्मलता के कर्म सब ते उचता की शोभा बनी नानक ए गुण नाम सुखमनी सब ते उचता की शोभा बनी नानक ए गुण नाम सुखमनी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
1: केलबो दी रंगीली धरती दे वसनीक स्रोतियो तुसी ये प्रोग्राम FM रेडियो CISK 94.3 तो सुन रहे हो। ए प्रोग्राम गुरुद्वारा साहिब वैष्णव सिंह सवा विलियम्स लेक तो प्रसारित कीता जा रहा है। उम्मीद रखते हां कि इस प्रोग्राम नु होर भी खोज भरपूर बनाउण लई तुसी सानु सुझाव दिंदे रहोगे। साडे स्टूडियो दे टेलीफोन नंबर तां आप जी नु पता ही है, जे नहीं तां ओ भी लिख लो जी। एरिया कोड 250-392-3374 अते फैक्स नंबर एरिया कोड 250-392-3375।
2: साडा ईमेल एड्रेस नोट करो जी singhsabha2@gmail.com। एक बार फिर नोट करो जी singhsabha2@gmail.com।
3: You are listening Speak Radio, broadcasting from Gurdwara Sahib, Western Singh Sabha, Williams Lake. Any comments and suggestions, please call
4: 250-392-3874. Karta अकाल मूरत अजुनी सैपं गुरप्रसाद जप आद सच

कर कृपा मोके नाम देखो नानक दर सरिता कर कृपा मोके नाम देखो नानक दर सरिता सतनाम अनुवासी गुरु

भगत सतगुर पुरख सोई जिस हर प्रभ पाना पावे आनंद अनहद वजह वाजे हर आप गल मिलावे तुसी पुत भाई परिवार मेरा मन वे

जियो सतगुर पाण अपने सह परवार सधाया मत मैं पिछे कोई रोवती तो मैं मूल ना पाया नित पै जाय नित बिगसै इस नित की पैज पावे उसी विचार देखो पुत भाई हर सतगुरु पहनावे सतगुरु पर तख हुंदै सह राज आप टिकाया सब सिख बंदप पुत पाई रामदास पैरी पाया सतगुरु पर तख हुंदै सह राज आप टिकाया सब सिख

दुखी सवेरे करो गुरु अर्जन साहब महाराज बहु आई जिस वे गंगा के चेहरे से नाराजता लिखी पूछा गंगा तेरे चेहरे से नाराजता क्यों उस वे फटाफट गोली ने आख्या सतगुरु मैं दसदी हाँ भरजाई थोड़े भरा ने मेरा मारिया कि गंगा के घर कोई पुत्र नहीं होना इन्हें जग तो औतरी जाना जेड़ा छेवा गुरु गद्दी से बहना वो मेहरबान बहना सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज गुरु अर्जन साहब कह लगे गंगा लोगों दिया मेहनिया तान्या तो अपना जीवन उच्चा रखी दूंगा नाम सुनन दे विच अपनी लिव जोड़ी नहीं होंगी रब की रजाए मने सिर उपर करता मने आप गुआए जो रब के भाने में रह के जीवन गुजार हो गया तो जीवन वो सुखाला होगा बहुत सारा जो साढ़े घर ना हो पुत्र हो असं सौखे हो जाएंगे मैं छे छे पुत्र कई घर ले गया उन्होंने बूहे सुनना भी यहोजे ना ही जमने सतगुरु कृपा करे महाराज कहते आसा में अत दुख करना आसा में अत दुख करना मन मुख चित लाया गुरमुख पै निराश परम सुख पाया गुरमुख वो ही सुखी है जिहड़ा गुरु के भाने में रह के अपनी जिंदगी बतीत करता सतगुरु कृपा करे महाराज कह लगे गंगा जी लोगों का मिलिया कहना दे परवाह नहीं करती थी रब की वजह में अपना जीवन गुजारी जाता आप जानते जी गुरु के सिखो भाई गुरदास जी गुरु महाराज के अनेक सेवक तरीके गुरु अर्जन साहब जी के मामे भी लगते सन पर उन्होंने घर कोई संतान नहीं थी गुरु नानक पातशाह ने दुनिया को पुत्र वंडे दुनिया को पर उन्होंने भैन बेबे नानकी उन्होंने घर कोई लाड नहीं थी उन्हें रब के भाने में रह के सारा जीवन बतीत किया जिस वे गंगा को आखिर बोले सतगुरु ढा भाणा सच से सच है और एक पुत्र की दात बचो महाराज कह लगे फिर ये निराश होने की कही गल किसी गुरु के सिख की सेवा करो तू पुत्र मिल जाएगा महाराज आप कर्म कारण के समर्थ सन पर देखो उन्हें एक मान अपने सेवक को देना सी उन्हें आखिर गुरु नानक साहब जी के पुराने सिख बाबा बुढ़ा साहब जी भीड़ में उन्होंने को जाओ जी अरदास करो पूर्ण होगी हम उस वे माता गंगा जी चंगे पकवान बना के छठी प्रकार के भोजन लैके रथा में चढ़ के नाल गोलियां लैके टोल कट के जिस वे भीड़ साहब पहुंचे सन तो बाबा बुढ़ा साहब जी ने जो पौद्या तकिया ना तो जो भोजन खोले तो बाबा बुढ़ा साहब जी कह लगे बाबा जी ये भोजन साढ़े छकन वाले भी गए अभी तो रुखी मिट्टी खा के गुजारा करने वाले हाँ बाबा जी एक पुत्र की दात बख्शो बाबा बुढ़ा साहब कह लगे बाबा जी इन्हों दाता के मालिक से गुरु अर्जुन साहब आप हुआ इन्हों दाता के मालिक होंगे तो फिर घा ही खोलते आंधे वादी मिलया वापस आ गए निराश हो गए जब पंचम पातशाह महाराज जी को पता लगा ते कहन लगे गंगा जो संतान महापुरुषा के डेरिया से जाइना ना उदो श्रद्धा धार के जाइदी आते लिबास में जाइना नीवे मर के जाइना कोई नमारी लै कौन पूरे सतगुर पास जो नीवे होके जाओगे पूरी श्रद्धा धार के जाओगे ना तो फिर सारिया मुरादा सतगुरु देंगे जदों भी संतान महापुरुषों को जाना हो निम्रता धार के बड़ी श्रद्धा में जाना चाहिए बाबा खड़क सिंह जी जो भीर सारी सेवा कराते रहे हम तो गुरपुरी सुधार के आ एक दिन एक दिल्ली का सेठ आते वे नोटा का बैग लिया बैग वे नोटा का रख के गाड़ी आख लगा भी महापुरुष का मेरा ना सिर दे के जरा नाम लिख लो तो महापुरुष आख्या भी आ बैग चुकना चाहे डेरे का पूरा बाहर निकल जा और कमेटी वाले को चलता भाए सारे सब बंदे ना लिखा ली अभी अपने प्योदा ने लिया तेरा कितों मिल जाएंगे इन्हों साधु
ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹ ਘੁੰਮਦਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗਲੀਆਂ ਚ। ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਤੇਰੇ ਬੰਦੇ ਕਰਨਗੇ ਤੇਰੇ ਆਈ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੇ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਬੈਗ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦੇਵੇ। ਆਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾਲੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ। ਸਾਧੂ ਇਹ ਜੇ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਆਖੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਦੋਂ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ ਜਾਈਦਾ ਫਿਰ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਈਦਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਸਾਦਾ ਅਰਦਾਸ ਧਾਰ ਕੇ ਸਾਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਚੱਕੀ ਉੱਤੇ ਆਟਾ ਪੀਸਿਆ, ਆਪ ਦੁੱਧ ਲਿਖਿਆ, ਮੱਖਣ ਕੱਢ ਕੇ, ਲੱਸੀ ਲੈ ਕੇ, ਦਹੀਂ ਲੈ ਕੇ, ਗੰਦਾ ਤੇ ਚਾਰ ਮਿੱਠੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੁੱਝਾ ਲੱਸੀ ਦਾ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਬੀੜਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਗਏ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਖੋਲੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਛੇਤੀ ਕਰੋ, ਭੁੱਖ ਬੜੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਜੇ ਮਾਂ ਨਾ ਪੁੱਤਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕੰਮ ਤੇ ਤੋਰ ਕਰੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੈਣਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋੜੀ ਇਉਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ।

0: बोले बदम के हनी मामल पड़ाएगा मारे नू जीवन बदशु दुष्टा नू मारेगा होएगा बली सूर मार
1: Yeah.

0: अपना चाई चाई मर लैके माता गंगा जी महिला विच पहुंचे। गुरु के सिखो सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज समा अपनी चाले चलता गया। 1595 गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज जी ने गुरु की वडाई विखे जिस तरह अवतार धारिया ते किस तरह जग नूं वधाइयां मिलियां, किस तरह गुरु अर्जन साहब जी ने लखां दा धन वंडिया। आखिरी कविता तुहाडी सेवा च कहण लगे जां सरवण करिए उस वेले किस तरह खुशियां हुईयां। आओ उस प्यारी नूं हाजू तकलीफ आई
1: छोटा जिहा

लालच बुरी बला है, उससे खुदा बचाए। ए पंडित लालच में आ गया, जहर दी पूरी ले ली, घर चले गया, रात नींद ना आवे। गुरु के सिखो लोग पाप का मूल है। आंधे को काशी तो पंडित पढ़ के आया, कहानी जा रहा है, काशी तो पंडित पढ़ के आया। ते एक जाति ने पूछा, वे पंडित क्यों आया? आंधा काशी तो ज्ञान लेके आया। आंधा किन्ना का? उन्हें आखा बड़ा ज्ञान लेके आया, तेरे मेरे मूर्ख नहीं बता के चलिया सरदा। उन्हें आखिया यार किन्ना ज्ञान लेके आया? उन्हें आखिया बहुत ज्ञान लेके आया। ना तू सवाल पा, मैं तेरा पुत गुलाम ना ज्ञान से जो मर्जी आ गई। उन्हें फिर जट फासा मारिया। उन्हें आखिया पंडित मैं ये दस कि पाप का प्यो कौन हुआ? वह चार छछो पते पै गया। जवाब ना आया। उन्हें आखिया ये सवाल ना मेरे गुरु ने दसिया, ना मेरे समझिया। उन्हें आखिया मैं तेरा जवाब अपने साल को फिर लेके आना। काशी वापस तुर गया। अपने साल में माई नहीं मार खाधी, इन्ने साल गाड़े, इन किरतन खाधिया, तो ज्ञान को फिर अधूरा रह गया। उन्हें आखिया क्यों? उन्हें आखिया मैनू तो एक सीधे जे चटने नहीं पड़ी तो अड़ता। उन्हें आखिया गल किया, तो उन्हें सवाल योजा पाया कि मैनू बाज बाव करता। उन्हें आखिया की सवाल पाया? आंधा उन्हें सवाल पाया कि पाप का प्यो कौन हुआ? तो मैनू अगर जवाब नहीं आया। उन्हें आखिया सारिया गल साल ही दसता हूं। एक अभी कोल रख लेना, मत कि चेले को मान ना आ जाए। आंधा मेरे सवाल का तेनू जवाब फलाने फलाने चबारे चवेस बारे जी वे तू मिलूगा। अपने गुरु के दसे टिकाने से चले गया। जिस वेले पौड़िया चढ़ लगा ना, उस लेसवा ने आख्या पंडित जी का नमाज देख के आख्या। उन्हें आख्या मार के मंदिर तुहाडी नहीं गई। उन्हें आख्या बेटी मैं किसी मंदिर वासना ना नहीं आ रहा, मैं ते अपने सवाल का तेरे को जवाब लैन वास्ते आ रहा। उन्हें आख्या फिर चढ़ जा पौड़िया चढ़ो। जो पंडित पौड़िया चढ़िया, उन्हें आख्या तेरा सवाल की आ? उन्हें आख्या मेरा सवाल आज पाप का प्यो कौन होगा मैं दसो। उन्हें आख्या तेरे सवाल का जवाब मैं तेन मिल जूगा, पर तेनू ये बदले को मेरी गल मिलनी पेगी। उन्हें आख्या जो आखेगी वह मनूंगा, जो कहेगी वह करूंगा। उन्हें आख्या तेनू पंडित जी मेरे घरों फिर प्रशादा छकना पेगा। उन्हें आखो हो दवाई खराब आई तेरे घरों प्रशादा, और तू पाप हजन वाली हो, मैं एडी उच्ची सुची कुल जन्म लिया, तेरे घरों में प्रशादा छके अपनी कुड़ा गलत कर लिया। उन्हें आख्या नहीं हो सकता। उन्हें आख्या फिर पंडित जी पौड़िया उतर के जन्म लिया। जो पंडित पौड़िया उतर लगा ना, उस रेसवा ने आख्या पंडित जी जरा तुम मैं प्रशादा छका ना, वो थाली सोने की आ, ग्रास भी सोने का, कौली भी सोने की, जिस चिमचे का तुम छकना वह भी सोने का वा। ते मेरा सुभाव भी मैं जेड़े जगवान को प्रशादा छका ना, मैं भांडे नाल ही दे दिनी हाँ। पंडित के दिमाग ने चक्कर खाधा, फटाफट फिर पौड़िया चल आया कि छेती कर जो कुछ बनया ना पा के लिया। जब उन्हें पलोस के खाना लिया ना, उन्हें आख्या पंडित जी तुम्हें एड्डी उच्ची सुची को इन्नी ब्राह्मण इन्ना ताड़ा इन्हें तहू सलोक याद, ते मैं पाप भजन वाली, ते एक बुरका कितने एक बुरकी पवित्र रखा ना, मैनू भी तोड़ के दे दो, ते मेरा भी जन्म सफला हो जाए। ये फिर पंडित चार पेड़े देख के बुरकी तोड़ के देन लगा ना, उन्हें बट के बूथले के चपेट मारी, ते अग्गों थाली खिंच ली। उन्हें कहा पता लगा ही पाप का प्यो कौन हुंदा? उन्हें आख्या जी लग गया, पाप का प्यो लोग हुंदा। लोग वास करके जिथे किते गुरु महाराज जी नू सिखो दही सिखाया करता सी ना, चंद कौडियां ते दुल के ते गुरु हरगोबिंद पातशाह नू ओ पंडित जहर दी पूरी लैके सिरछे उपर ते गुरु नू छकाउण नू तैयार हो गया। घर च गया, रात नींद ना आवे, अमृत वेले फटाफट उठिया, इन्हें जाके गंगा ते बड़े स्नान किते, भर भर पानी पाई आवे, कभी काली माई नार, कभी शेरा माई नार, बड़े ने जंतर मंत्र पढ़े, खड़ी खड़ा अगे ना कदया। जिस वे जहर की पूरी नहीं आ,
ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਨਿਆਣੇ ਨਵਾਲ ਧਵਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿਉਂ ਖੈਰਦੇ ਆ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅੱਜ 12 ਵਜੇ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਸਿਰ ਢੇਰ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫੀਏ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੰਗੇ ਨਾਮ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪੰਡਿਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਅੱਜ ਲਾਲ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਲਾਲ ਜੀ ਅੱਜ ਇਕੱਲੇ ਚਬਾਰੇ ਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਚਬਾਰੇ ਤੇ, ਆਂਦਾ ਕੰਮ ਹੋਰ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਚਾਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਹੀਂ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਭੋਜਨ ਲੈ ਪਿਆ, ਨਾਲੇ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਾਪੀ ਮਨ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਬਾਲਕ ਨੇ ਨਾ ਖਾਧਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਪਾਪੀ ਮਨ ਫਿਰ ਹੰਗੂਰਾ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਤਕੜਾ, ਇਹ ਘਟਨਾ ਦਲਿਆ ਫਲ ਨੀ, ਢਾ ਕੇ ਛੁੱਟੀ ਮੂਝ ਪਾਣੀ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹ ਚੜਿਆ ਤੇ ਇਸ ਪਾਪੀ ਪੰਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਛੰਨਾ ਮੂਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਛੰਨਾ ਪਛਾਣ ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੋੜਾ ਜਬਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਫਿਰ ਬਾਲਕ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਮਾਂ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਉਹਨੇ ਮਾਂ ਮਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਵਾਜਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਲਾਲ ਜੀ ਰੋਂਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਨੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦੇ, ਖੇੜਾ ਨੀ ਕਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਡਿਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਪਤਾ ਨੀ ਅੱਜ ਖੇੜਾ ਕਰਦੇ, ਬਾਲਕ ਦਹੀਂ ਪਤਾ ਨੀ ਕਿਉਂ ਨੀ ਛੱਡਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਲਿਆ, ਦਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਛੰਨਾ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬਾਲ ਘਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਛੰਨਾ ਪਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਪੰਡਤਾ ਇਹਨੇ ਸਾਡੀ ਕਦੀ ਕਹਿਣੀ ਨੀ ਸੀ ਮੋੜੀ, ਅੱਜ ਬਾਲਕ ਦਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨੀ ਛੱਡਦੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਨੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਜ ਖੇੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੰਡਤਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰੰਗ ਅੱਜ ਕੋਈ ਦਹੀਂ ਦਾ ਤਬਦੀਲ ਜਿਹਾ ਵਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਚਾਟੀ ਚੋਂ ਪਾਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਚੋਂ ਅੱਗੇ ਸਕਾਉਣਾ ਮੈਨੂੰ ਨੀ ਪਤਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਸ ਲਹਿਰੀ ਛੰਦ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਵੇ। ਮੰਨ ਲਓ

ग्रुप का संगत, जिन्होंने जाना सी हम तक चले गए ने, वडभागी हो सतगुरु की हजूरी च बैठे हो, यत्न करो सारे रसना नाल गाओ ता जो जिथे शरीर करके बैठे हैं सतगुरु की हजूरी, मन करके भी जुड़ जाइए सतगुरु की बाणी नाल। आखो सतनाम करो, कृपा सारे पढ़ो।

सब कुछ छोड़ के चलो आओ मालक के चरणों में करिए बेनती जाए मिला तिना सजना तुतो नहीं हो। इसी प्रकरण का शब्द गल प्यार भी है कि रब नाल कितना प्यार है, असं कितना प्यार का समय करते हैं। पावन शब्द पढ़ रहे हैं रात तुफारी संत महला चौथा। अंतर प्रिय प्यार क्यों फिर बिन जीव राम जाए मिला तिना सजना तुतो नहीं आओ। इसे ही प्रकरण का शब्द सारे पावन शब्द रल के जाएंगे।

सुना मन प्रसन्न स्थान पर आए हैं। सतगुरु साडे सारियां दा गावया सुनिया थाई जा जाए। फतेह बुलाओ वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी।

शोभा ब्रह्म ज्ञानी बानी, शोभा ब्रह्म ज्ञानी बानी, नानक ब्रह्म ज्ञानी।

0: कव्योवाच विनती चौपैसा पाछय दसी हमरी करो हाथ रे रचा
1: पूरन होए चित की इच्छा
0: सब चरणन मा रह।

संतान अपने गुरु ग्रंथ से हमारे भी पावन गोद विच जुड़ बैठने को प्यारी सत्संगी जनों आओ जुड़ो अपना अपना मन गुरु की बाणी के नाल पावन शब्द दर्शन मांगो देह प्यारे तुम्हारी सेवा कौन कौन मिलना तारी आओ दर्शन की दात उस परमात्मा को मंगिए कोई रचना वांझी ना रहे सारे ही करो रचना पितर गुरु शब्द द्वारा लगवाओ हाजिर।